सदगुरु प्रसाद उतार खासे दस्तखत का पातशाह दसवीं अकाल गुरु की रिचा हमने सर्वलोक दी रिचा हमने सर्वकाल जी दी रिचा हमने सर्वलोक जी दी सदा रिचा हमने बणतन महीप जल तल महा जय तह प्रसो प्रण निधान जग मगत तेज पूर्ण प्रताप अंबर जमीन जय जपित जाप सातो का सातो पतार बितरियो अदृष्ट।

पावड़ी वड़े के आवड़ी आया कुछ कहना पहन जाए। सोकरता कादर करीम दे जी यार जी संभाए साईकार कमा।

जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा है वस तेरा घर पल तेरा है घर आनंद बधाई दुध घर माण मत्ता तेजे अपने आप जत सर्व कला भरपूर दी सिजत कता नानक दास अरदास दया गए बिनवत्ता सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिवस रात दुए दाई दाया खेले सकल जगत।

दीर्घ आयु बक्षणी, देह रोगता बक्षणी, अंग संसायोना, शरण जीत कावर जी, सर्व ज्योत सिंह।

दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज बाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहिबा दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बोला रे।

0: गुरु पंथ खालसे दी दिनो दिन चार दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।
1: गुरु प्यारी सात संगत जीओ, हुण धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दी पावन लड़ीवार कथा विचार होवेगी। कथा विचारां नूं सरवण करके अपना जीवन सफला करो जी।

सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हाओ फिराओ खोजंतिया। तिस

चर मूल ना थुड़ींदो जी चर आप किरपाल। शब्द खोट बाबा नानका खाहे खरच तन माल।

प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूव्रत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक बेदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण।

कई देश देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूँ करत जल मह जाप कहूँ सहत तन परताप।

कई ब्रह्म वेद रटंत कई सेख नाम उचरंत बैराग कहूँ संन्यास कहूँ फिरत रूप उदास।

जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नभे हरि इहां हरि उहां हरि जिमि हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अदुख हरि अद्वैख।

ब्रिछस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु वं भजस्तु वं रटस्तु वं ठटस्तु वं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभातु हि अछूतु हि अछतु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु हि मत

जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनों का फेर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोड उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते काछ माछ केते उनको करत भज, केते अच वच होय सपच उड़ जाहेंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज, केतक प्रतच होय पचा।

तेज जैसे तेज लीन ताहि तयो बज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंगवासी कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानव बड़े बोध हारे बुद्धक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार बूझ हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मटी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत

रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न पितरं न पुत्रसत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं गभेखं गजोनि स्वरूपं।

मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वै खंग पे खंग जो निसरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशीय छेदं गच्छयाद् अद्वै अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से।

खंडत प्रतापाद अक्षय विभूते न जन्म न मरण न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाथे न नेहंग न केहंग स नेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न वित्र सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न जोभंग भूतंग अभेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नियच्छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभय निर्विषादंग अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न केहंग न भर्मंग न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो।

छिज गात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जे सत्र मित्र नहीं जन्म जात जेह पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जेह करम भरम नहीं धर्म ध्यान जेह नेह गेह नहीं ब्योतबान जेह जात पात नहीं सत्र मित्र जेह नेह गेह नहीं चिहन चित्र जेह रंग रूप नहीं राग रेख जेह जन्म जात नहीं भरम भेख जेह करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जेह नाम थाम नहीं बर्ग ब्याद जेह रोग शोक नहीं सत्र साध जेह त्रास वास नहीं देह नास जेह आद अंत नहीं रूप रास जेह रोग शोक नहीं जोग जुगत जेह त्रास आस नहीं भूम भुगत जेह काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप खाय भंग जेह नेत नेत उचरंत वेद जेह अलख रूप।

खास हंत कई कलब एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कूक काव कथत कते कई अगन होत्र कई पवन हार कई कर्त कूट मृत को आहार कई कर्त साक पत्र भक्ष नहीं तद देव।

कहजी तब कहमरन है कवन सुरत कहजी तब कहमर कोस बुड़ा कोस बुड़ा तारा कहाँ तारा कोस बुड़ा कोस बुड़ा कहाँ कोने बुड़ा जब सकता कहाँ जब कहाँ कोने बुड़ा जब मैं कहाँ जब कोस बुड़ा है कहाँ कहाँ जब कोस बुड़ा है कहाँ कहाँ सब संता कोस बुड़ा है जब कहाँ सब संता कोस बुड़ा तब कहाँ कहाँ मत कोस बुड़ा तब कहाँ कहाँ रन करता जब रन हर सुख है कहाँ गए तो रोगी रागी कहाँ कहाँ जब तुम रोगी रोगी कहाँ कहाँ तब मैं तब कवन विष्णु को पुष्ट है कहाँ से कवन विष्णु को पुष्ट है कहाँ से कवन विष्णु को पुष्ट है कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से प्रसाद आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन भूषोदन रूप तेज कंदन दुर्जन वरमन रूप बदन दो रतन संदन कमन से दो दान ब्रह्मा कमन से वरन कमन वरन वरन से जगदन जगदन संपूर्ण से तरन जग बल समाद प्रति वरन दावरुण के वरन के भुजावन वर तेज वरन मंगुड़िया दान ने का तेज वरन सरन प्रिया मंगल चरण मंत्र संस्कार दान के सुहन दान के अर्थ जान के पुण्य पुण्य नाम जय जय मुसे मन का धर्म मध्य लड़ा जय दामनी प्रहासन सुचमे वासन से दान प्रति प्रहासन गुरु सुचमे ने पता सुचमे आपने दस करोड़ आज जन्म दिले ने राज जन्म दर्शन बुद्ध दिले माच त्रोणां तरण जन्म दिए ने विवान ती जोरों जन्म दर्शन जी खड़ी ने दिले में जाए जाए मुझे बन कर दे मत जन्म पाल में मास दिन बन कर दे मत न पाग लोग ने बार न दे चिर जारन सुरक्षु बार बार दे बर दे बर जन्म यरन सिर का लाओ बार बार सुर दार ने तड़ के प्रमाण कारण दात दे सत्ता दी संदा धन दे प्रभान बोल दे बान दे जतलान बन दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे केसरी प्रवाह सुसन्ना है अगेतना है ये पृथ्वी है जय हो से मन ते जगत का मल संगा जगत रे में पूर्ण नर मन मन दर तो के गंधन पूर्ण नर मन मन दर तो के गंधन उठ मारने का दम दावे ने काले वाला को आ रे तो थे मंगल ने ब्रह्मण से मन मोहन सिंह हरो भंग भंग तो रे जय जय हो से कर तो रे जन पाए पता से तो समर ले मन तन पाए पता का सन ले संगते निवारण धमोदारण संगते निवारण धमोदारण धमोदे जंति जवान लगे नगदे अलग धमोदारण का जल चले जंति आसुर धमोदारण संगर धमोदे जगे वितर कर तुम धमोदारण मन धमोदे जीवे जगत बद प्रताप उसने स्वत्र बदे जादरी नवाज कर बदे अधरंजन का नकांगी अलग बुद्धंगी तुम दुला जमनंगी शिकार बुद्धंगी तुम धमोदे नरक दे बदे धमोदारे दूर बदे बदे धमोदे धमोदे के धेरे लंके आधमोदे के अंकुर के धेरे जय जय उसी लगता से बिंदा जय मंत्र जय सुर जय बल जय रोहन जय
कारण करीले कर वही जो करीले तो निकल दे ये जन करण सर सर जन करण दा मदन करण का दर तेरे दुख दुख के तम मंगे पाए के बंगे बुझ पड़ बंगे के उसके धक्का दे ये क्या क्या जन हो के से मत धक्का दे ये जहाँ आज लगाओ से ना धक्का दे आज तो कादर ना धक्का तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण एक घटे निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सुर मारण नरक निवारण तचरा सु

पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पद्मापद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो खुरुहान की रोज निटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहमेव न बेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान।

दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छ है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत।

तह भेद बतावे खोल तके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो। भेद कतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। भेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पान सब बचहारे। भेद न पाए सक्यो न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। याद अनाथ अगाध बेगद वैग जप्यो तिन ही कुल तारे। तीरत कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास।

फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है। मर डाम गेल तेरी मन सो तपस्या कर दीड़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रुहेल माग दे सके मंगेले वीर बंग से बुंदेल बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीस न्यावे ते बते थे आए दुख दे के दलत है। जिन्हें तो है दायो तिन्ह पूर्ण।

तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के

काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भूगत के वृद्धता की बासी है जो को हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान को जीवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पर अवार हूं को पार जा को की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय।

साज हुंक साजा महा जोग हुंक जोग है धर यद्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंसनी सिसी हारू मही रसी हुसन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गठ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी के लाश कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी सासी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहार के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के ब्रतंगी तेरे गीत गायत है फकरी गंधारी गोर कखरी कर दे जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र ते अतापी नाथ कीरत

हे गुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेख फतेह, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे।

दोहरा नमस्कार श्री खड़ग को करो सोहित चितलाय पूरन करो ग्रंथ है तुम्हें करो सहाय त्रिपंक्ति छंद श्री अकाल जी की उस्तक।

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्व युक्ते तो काल प्रणाशि दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते देखते गोपते नुसरपिदन आपदे नानक गुरु गोविंद सिंह जी त्रिय अकाल पुरख जी सहाय दरबार में तेरो दरबारा सच